देखा है बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मैं भी पहले ऐसी थी कि हर चीज लोगों को समझानी होती थी मुझे कि यार मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ। अब ना मैंने खुद को थोड़ा सा बदला है और मैंने अपने आसपास लोगों को भी देखा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक एज के बाद या एक टाइम के बाद खुद को थोड़ा सा बदलते हैं। अब हम खुद को एक्सप्लेन नहीं करते हर किसी के आगे, अब जो जैसा समझ ले हम वैसे ही हैं। जिसको जाना है जिंदगी से वो शौक से जा सकता है, अब लोगों को रोकने का दिल नहीं करता। पहले मैं लोगों से अपने सर्कल में कहा करती थी यार प्लीज मत जाओ, अब कहती हूँ जाना है तो जाओ। बिकॉज एक बात तो सच है जो मैंने समझी कि कोई किसी के बिना मरता नहीं है। हाँ प्रायोरिटी होती है, इंपॉर्टेंट होते हैं लोग, बट फिर भी हम उनके बिना जीना सीख लेते हैं। तो जब ऐसा दस्तूर है जिंदगी का तो मैंने भी सोचा कि मैं भी सीख ही जाऊंगी जीना लोगों के बिना, इसलिए अब भागती नहीं हूँ, रिक्वेस्ट नहीं करती हूँ। बस अब एक ही बात समझती हूँ और उसे याद रखती हूँ कि दूसरों को पाकर खुद को नहीं खोना है मुझे, सबसे इम्पोर्टेंट खुद को पाना है। बस इतना आप भी याद रखिए और देखिए आप खुद को चेंज करके कि आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आता है। सुनते रहिए सताक्षी के साथ, इट हैपेंस, रेडियो वृषवाणी 107.0।

आजकल ना मुझे चुप रहना पसंद है। हाँ, मैं बहुत बातें करती थी, बहुत बोलती थी। आपके साथ तो अभी भी बोलती हूँ, बट जनरली जब लोग आसपास होते तो मुझे चुप रहना पसंद है। किसी से ज्यादा बात करने का मन नहीं करता, और ना ही हर जगह अपनी बात रखने की जरूरत महसूस होती है, ना ही किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा खुशी होती है। जो चीजें पहले एक्साइटमेंट देती थी, अब उन्हें देखकर बस हल्का सा फील होता है। शायद लोग नहीं बदले हैं और शायद मैं भी नहीं बदली हूं, बट जिंदगी ने इतना जरूर सिखा दिया है कि हर चीज पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता है। क्योंकि कभी कभी ना इंसान उदास नहीं होता, वो बस थोड़ा सा थक जाता है, और जब इंसान थक जाता है तो उसे शोर नहीं, खामोशी अच्छी लगती है ना? और इसी खामोशी के नाम एक और ट्रैक सुनिए, और सुनते रहिए ठापंस रिजु ब्रिस्वानी 107.01 FM।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

लगता है कि मेरा दिल कुछ एक्स्ट्रा प्योर है। हाँ एकदम साफ, क्योंकि अगर कोई मुझसे थोड़ा सा भी प्यार से बात करता है ना, तो मैं उसे हमेशा स्पेशल बना देती हूँ। चाहे 2 मिनट की बात हो, मैं उसे 2 साल का कनेक्शन बना देती हूँ। और फिर जब लोग अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, तब मुझे रियलाइज होता है कि उनकी लाइफ में तो मेरी कोई जगह ही नहीं थी। शायद मुझे लोगों को नहीं, अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करना सीखना है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ही तो हैं जो दूसरों से उम्मीद लगा बैठती हैं। और उन्हीं उम्मीदों को सच मानकर मैं दूसरे को अपने सराखों पर बैठा लेती हूँ, जबकि शायद उसके लिए मैं एक आम इंसान है ना। और एक्सपेक्टेशंस सबसे ज्यादा दर्द देती है, इसलिए एक्सपेक्ट कम कीजिए और दूसरों को नहीं, खुद के इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। सुनते रहिए इट हैपेंस, सताक्षी के साथ रेडियो बिस्वानी 1701 AM।

0: अच्छा जी, एक सवाल पूछना था आपसे। आपने कभी पेट्रोल पंप पे जाके कॉफी मांगी है?
1: नहीं ना,
0: तो फिर जिंदगी में ये गलती बार बार क्यों करते हैं? हम उन लोगों से अपनापन मांगते हैं जो सिर्फ मतलब जानते हैं। हम उन लोगों से इज्जत की उम्मीद रखते हैं जो किसी की इज्जत करना नहीं जानते। हम उनमें अपनापन ढूंढते हैं जिनके दिल में सिर्फ और सिर्फ फायदा रहता है, और जब वो हमें दर्द देते हैं तो हम टूट जाते हैं। सच तो ये है कि गलती उनकी कम हमारी कहीं ज्यादा होती है। इसलिए याद रखिएगा, जहां पेट्रोल मिलता हो वहां कॉफी कभी मत मांगिएगा, और जहां सिर्फ फायदा देखा जाता हो वहां रिस्पेक्ट और अपनेपन की उम्मीद मत लगाइएगा। सुनते रहिए ठाकुर सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 FM।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ, ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: I cannot sleep.
1: अच्छा कुछ लोग कहते हैं ना कि यार तुम्हें समझना बड़ा मुश्किल है, तो हाँ उनसे कहिए कि सच में मुझे समझना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं हर किसी की समझ से बाहर हूँ ना, क्योंकि मैं सिंपल नहीं हूँ, मैं सेलेक्टिव हूँ और मैं हर किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ और ना ही हर किसी से बात करती हूँ, क्योंकि भाई रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, ये कमाई जाती है। और ये भी कह दीजिएगा कि जहाँ मुझे खुद को प्रूफ करना पड़े वहां रहना मैं खुद की इंसल्ट समझती हूँ, फिर देखिए सामने वाले की शक्ल कैसी होती है। एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ और यूं ही सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस रेडियो प्रिंस पानीपत।

चल दोस्तों, आज इट हैपेंस पर ये हमारा आपके साथ एक और आज का साथ था, और आई होप कि आज इस साथ के साथ आपको भी जरूर मजा आया होगा और इस साथ के साथ आपने भी हमारे साथ चंद कदम जरूर बढ़ाए होंगे आज की सुबह के लिए। तो चलिए बस कुछ ढेर सारी बातों, जज्बातों और किस्से कहानियों के साथ मैं मिलती रहूंगी आपसे हर रोज सुबह इट हैपेंस में। आज अब इस सफर को वाइंड अप करने का ये वक्त है। ख्याल रखिए अपना, जुड़े रहिए खुद के साथ और इंजॉय करते रहिए अपनी इस बेहतरीन सुबह को। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। नमस्कार।

नाचे नाचे कोई वहां आहा नाचे नाचे सारे हंसी आहा नाचे नाचे।

हां जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 FM ते जी आरचे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो, कोक स्टूडियो भारत ने ना अपना नवा गीत कचौड़ी गली जा तो रिलीज किया ना, हर कोई इसे गाने की गल कर रहा है। भोजपुरी लोक गीत का सब तो सुंदर मनिया जाने वाला यह गाना रेखा भारद्वाज ने गाया है। गाने का नवा वर्जन कचौड़ी गली हर किसी की जुबान ते छाया होया है जो लोग संगीत ते आधारित है। इस बार शो ने भोजपुरी दी लह विच बनारस दियां गलियां दी धुन प्रस्तुत कीती है। एक सदी तो भी वध पुरानी कचौड़ी गली गाने नू रेखा भारद्वाज ते बिहार दे इंडी लोक गायक उपल उदित ने गाया, निशांत नागर ने इस तैयार किया। यह गाना ना एक अजिहे समय ते कहानी नू पुनर्जीवित करता है जो कदे होया करता सी। एक अजिहे गाने नू जो एक सदी तो वध समय दी परंपरा दसदा है। ते अज इस गाने दी पूरी कहानी मैं दसदी हैगी आ तुहानू कि किवें किस दौर दे विच लिखिया गया सी, की कुछ होया सी, इस शुरुआत किवें सी। इस दी शुरुआत इस लाइन नाल हुंदी है कि सेजिया पे लोटे काला रंग। बड़ा सोहना जिहा गीत हैगा, तुसीं जरूर सुनियो, पर मैं तुहानू इस दी कहानी मैं सुना दिंदी हां। गीत तुसीं यूट्यूब ते जरूर सुनियो।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only, consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich ag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di ag to bachav di yojana banao ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकारित।
2: सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हां तुहाडा प्रधारपित। एक बार फिर सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असीं तुहाडे कोल आ रहे हैं।
3: The legend, Harbhajan Mann, live in Brisbane,
4: Saturday 15th August, 6:30 PM.
2: Milde hain ji, Brisbane.
4: At Brisbane Central Auditorium, Mount Cravat. Tickets at Premier Tickets.
5: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
6: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
5: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
6: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
5: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
6: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
5: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
6: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
7: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only, consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बिसवानी 101.1 FM ते जी आरचे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो एक गाना ना कचौड़ी गली है जेड़ा, एक गाना पूर्वी उत्तर प्रदेश ते बिहार के कुछ हिस्सों विच फैले पूर्वांचल ते तो हजारा पुरुषों के पलायन का भी मतलब संबंध रखता है, जो 19वीं सदी दे विच ना एग्लो बर्मी युद्ध के दौरान शुरू होया सी। हजारा आम नागरिकां नूं अंग्रेजां वल्लों ना जबरदस्ती रंगून या बर्मा विच सिपाही बना के भेजा गया सी। 1824 तों 1937 तक बर्मा ब्रिटिश शासन दे अधीन सी। हालांकि गाने विच उड़ल जहजवा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पर इस पर जेड़े पुरुष सीगे नूं अक्सर भीड़ भाड़ वाले स्टिमशियों विच भेजा जांदा सी जो कदे कलकत्ता तों रवाना हुंदे सीगे।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101.1 ते जी अच्छे संदेश अलग दराल से बने हुए हो। हुण देखो कचौड़ी गली बारे में तो इन्ना कुछ दसता हैगा है, तुसी देखियो जरूर एक बारी गीत। ते तुसी जेड़े घर दे विच बुजुर्ग होणगे ना शायद उन्हां नूं कुछ पता होवे या फिर गूगल करियो तो थानू पता लग जाना है कि यह गल्ला कि सच है कि ने। हुण देखो इस दे नाल होर भी गल्ला है ने जुड़िया हुई जिवें 1885 दे युद्ध दा जिक्र। 40,000 सैनिकां दे विचों ना 15,000 मलेरिया पेचिश ते घने जंगलां विच होई लड़ाई दे कारण शहीद हो गए सी। हालांकि युद्ध 1885 विच खत्म हो गया सी पर ब्रिटिश जिहड़ियां नीतियां सीगियां उन्हां दे कारण 1900 दे दहाके विच भी पलायन जारी रहा। युद्ध ने व्यापक आर्थिक अस्थिरता लिया दी सी ते बर्मा विच बंदरगाह शहरां विच रोजगार दे अवसर उपलब्ध सी। इन्हां लोकां ने बंदरगाहां चौलां दीआं मिलां ते दिहाड़ी मजदूरां दे रूप विच काम कीता। बर्मा ब्रिटिश प्रणाली यानी कि काला पानी दे लई मशहूर सी इह, जिस दे तहत भारतीय कैदियां नूं अंडमान ते सैलूलर जेल विच कैद कीता जांदा सीगा।

0: just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only, consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal janglaan vich agg lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di agg to bachav di yojana banao, ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकारित।
2: सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हां तुहाडा प्रधानपत एक बार फिर सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असीं तुहाडे कोल आ रहे हैं।
3: The legend, Harbhajan Mann, live in Brisbane,
4: Saturday 15th August, 6:30 PM.
2: Milte hain ji, Brisbane.
4: At Brisbane Central Auditorium, Mount Cravat. Tickets at Premier Tickets.
5: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
6: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलोंगाबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan
2: aur aap sun rahe hain Radio Britswani.
3: Hi guys, I'm Madhvi from the Meat Brothers and aap sun rahe hain Radio Britswani.
4: Hi, this is Salman Khan
5: aur aap sun rahe hain Radio Britswani.
6: Hi, this is Deepika Padukone aur aap sun rahe hain Radio Britswani.
7: To everyone tuning into Radio Britswani, this is Alia.
8: Hi, main hoon Tulsi Kumar aur aap mujhe sun rahe hain Radio Britswani.
9: To everyone tuning into Radio Britswani, this is Shahrukh Khan.
10: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
11: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
10: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
11: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट।
10: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हां तुहाडा अपना हरप्रीत। एक बार फिर सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असीं तुहाडे कोल आ रहे हैं।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

दोस्तों, कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशे निविया के साथ, और आपसे मैं यही पूछना चाहती हूँ कि कैसे हो आप और कैसा फील कर रहे हो। वेल, मिड वीक इज हियर एंड वीकेंड दूर नहीं है। सो आपने पहले दो दिन मजे से और बहुत ही अच्छे से काम कर लिया, और आज तो तीसरा दिन भी ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने वाला है। सो थर्सडे फ्राइडे बचा है और फिर से वीकेंड की आगोश में आप खो जाओगे। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले तीन दिन आपको जम के काम करना होता है, तभी तो जब आप रेस्ट करते हो उसका मजा जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। सो जम के काम कीजिए, जम के अपने सपनों को पूरा करने की तरफ अपना कदम बढ़ाइए, और जम के अपने खुशियों के लिए जी हाँ पहल कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले अब आपको पता ही है क्या करना है मैंने, और अगर आपको नहीं पता है तो हम करने वाले हैं एक हेल्दी रिचुअल प्रैक्टिस जो कि बहुत ही अच्छे से हमें हेल्दी रखता है, स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली, आप किसी भी तरह से कह दें। आई एम टॉकिंग अबाउट डीप ब्रेथ एक्सरसाइज, और ये जो लंबी गहरी सांसों की ताकत है ना रमेश बाबू, आप नहीं जान सकते। तो आइए सबसे पहले वही करते हैं। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर बिना देर किए शुरुआत करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ। गाने का नाम है कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। जी हाँ, इससे ज्यादा मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही हैप्पी हैप्पी सा सॉन्ग है, एंड दैट्स व्हाट वी नीड, हैप्पी हैप्पी सॉन्ग्स एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, राइट?

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो गया है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करने का और प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है, तो आपको पता ही है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वेल ऑफ कोर्स मैं बात कर रही हूँ मौसम के बारे में, टेम्परेचर के बारे में। क्या कह रहा है मौसम, क्या कह रहा है टेम्परेचर? आइए जरा सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर की। तो 25 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो टेम्परेचर रहा मैक्सिमम। अगर अभी की बात की जाए तो 22.3 डिग्री सेल्सियस के करीब है और फील आपको हो रहा है 20.8 डिग्री सेल्सियस के करीब। इसी के साथ रात की बात की जाए तो 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आएंगे और 50% चांसेस हैं 6 बजे से बारिश होती हुई मुझे नजर यहाँ पर आ रही है। जी हाँ, मतलब 6 बजे जो है वो बारिश लग जाएगी और फिर उसके बाद जो है वो कुछ इलाकों में बारिश होती हुई नजर आएगी। अब अगेन रात को जो है अब वो बादल जो है वो आसमान में आपको नजर आने वाले, अगर बारिश नहीं भी होगी तो बादल जरूर दिखेंगे और ये चीज जो है वो बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि आज जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाइट है व्हेन इट कम्स टू स्टार गेजिंग और ये जो सेलेस्टियल इवेंट्स होते हैं, जो नाइट स्काई में जो इवेंट्स होते हैं, खूबसूरत नजारे होते हैं, वो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाइट है उसके लिए क्योंकि आज 3 बहुत ही बड़ी चीजें हो रही हैं, इम्पॉर्टेंट चीजें हो रही हैं। बट अभी के लिए मैं इतना ही कह सकती हूँ कि बादल मुझे दिख रहे हैं तो वो शायद आपको उतने अच्छे से नजर ना आए। बट वहीं अगर हम बात करें एयर क्वालिटी की तो एयर क्वालिटी है एकदम फेयर और वहीं अगर बात करें कल की और परसों की यानी कि थर्सडे और फ्राइडे की तो 24 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ नो चांसेस ऑफ बारिश, सूरज जो है वो खिला खिला मुझे नजर आ रहा है और फ्राइडे को भी सेम जो है मुझे सिचुएशन नजर आ रही है यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ नो चांसेस ऑफ बारिश, मतलब 10% जो कि ना के बराबर और कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, इसके अलावा बाकी सब मुझे नजर आ रहा है। लेकिन दोनों ही दिन जो है वो सूरज जो है वो खिला खिला मुझे यहां नजर आ रहा है जो कि बहुत ही अच्छी बात है।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Sat Sri Akaal, madam, namaskar, dosto, main hoon toda Prathak Pajit. Ek baar phir Satrangi Ping Australia Tour 2026 leke assi toade kol aa rahe hain.
5: The legend Harbhajan Mann live in Brisbane
6: Saturday 15th August 6:30 PM.
4: Milde hai ji Brisbane vich
6: at Brisbane Central Auditorium Mount Gravatt. Tickets at Premier Tickets.
7: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ. दोस्तों इसी के साथ अब जरा बात कर लेते हैं आपकी फरमाइशों की, क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है, मौसम का हालचाल भी आपको बता दिया गया है और अब बात आती है आपकी फरमाइशों की, जो कि हमारे इस प्रोग्राम इवनिंग वाइब का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. वो इसलिए क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम में सिर्फ मैं ही नहीं बोलती हूँ, मैं ही आपके लिए गाने नहीं प्ले करती हूँ, बल्कि आप अपने फेवरेट गाने हमसे खुद भी प्ले करवा सकते हैं. आप अपने गाने रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं और तो और किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं और उनको स्पेशल भी फील करवा सकते हैं. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से फोन उठाइए. नंबर आपको डायल करना है, नंबर है +9182888-71701. आई रिपीट, +9182888-71701. तो बस फिर जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश. और जब तक आप भेज रहे हैं, हमारी तरफ से एक बहुत ही मजेदार सा गाना फ्रॉम अ मूवी, जब तक है जान.

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ आपके फेवरेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कर ली है शादी। जी हाँ, इतनी सारी खबरें, इतने सारे कयास लगाए जा रहे थे कि रोनाल्डो की शादी में ये आएगा, वो आएगा, कौन कौन आएगा, मतलब इतनी सारी बातें हो रही थी। लिटरली ऑल द मीडिया टेबलॉइड्स वर टॉकिंग अबाउट इट, बट टर्न्स आउट कि रोनाल्डो और जॉर्जिना ने सबको आश्चर्यचकित करते हुए एक ऐसी शादी कर ली जिसमें उन्होंने लोगों को बुलाया ही नहीं, बल्कि उन्होंने बहुत ही करीबी लोगों और अपने 5 बच्चों के साथ मिलकर उस शादी को अंजाम दे दिया और जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा भी कर दिया। सो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द लवली कपल क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड जॉर्जिना, बिकॉज या यू हैव बीन टुगेदर फॉर सो लॉन्ग एंड दिस वॉज मेंट टू बी, दैट्स ऑल वी कैन से। और ये जिंदगी खुशियों से भरी रहे। और मैं तो कहती हूं कि क्रिस्टियानो के जितने भी फैंस हैं, कहीं आप क्रिस्टियानो के रिसेप्शन अपने तरीके से तो नहीं दे रहे? मतलब क्रिस्टियानो की फैन फॉलोइंग जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। अभी फीफा वर्ल्ड कप में उनके लिए जो जर्नी थी वो बहुत आसान नहीं थी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में उन्होंने कह दिया कि आप प्रोफेशनली अगर कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा है तो पर्सनली मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगा, तो एटलीस्ट एक वाली साइड से तो अच्छा रहेगा, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। जी हाँ, अब इस शादी के बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि कैसे ये शादी जो है वो किसी बड़ी से आइलैंड पे हो सकती है। ऑफ कोर्स वो पोर्चुगल में ही होनी थी, ये तो पक्की बात है, क्योंकि पोर्चुगल से ही है जो रोनाल्डो हैं और अपने जो है गृह भूमि में ही ये करने वाले थे शादी, ये भी पक्की बात थी। लेकिन किसने लोगों के साथ, कौन से स्टार स्टडर्ड जो है ये वेडिंग होने वाली थी ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन यहां पर क्रिस्टियानो ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया और उन्होंने कह दिया कि यू नो व्हाट, दिस इज अ वेरी प्राइवेट मोमेंट एंड दिस इज अ वेरी वेरी पर्सनल मोमेंट फॉर अस एंड वी आर गोना सेलिब्रेट इट पर्सनली। सो उन्होंने और उनकी वाइफ ने, दोनों ने अपने हाथों की और अपनी वेडिंग बैंड्स की फोटो जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर की एंड 20 घंटों में 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज सिर्फ इंस्टाग्राम पर हो गए हैं उनकी सोशल मीडिया पर। कैन यू इमेजिन? सो या अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू द लवली कपल, और साथ और प्यार आपका बना रहे हमेशा, यही है हमारी दुआ। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
10: सत श्री अकाल, मदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ थोड़ा प्रधान पंडित. एक बार फिर सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असीं तुहाडे कोल आ रहे हैं.
11: The legend Harbhajan Mann live in Brisbane
12: Saturday 15th August 6:30 PM.
10: Milde hai ji Brisbane vich
12: at Brisbane Central Auditorium Mount Cravat. Tickets at Premier Tickets.
13: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
14: तो उमसॉक से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
13: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
14: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
13: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा.
14: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
13: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
14: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +918448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई. ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.
15: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में. फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद. कॉल नाउ ऑन 04111270035. रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर. For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
16: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशी निविया के साथ. दोस्तों, इस दुनिया में ना बहुत बड़े अजूबे हैं. मतलब अजूबे वही नहीं मैं बात कर रही हूँ, जो सात अजूबे हैं जो कि ताजमहल, माचू पिच्चू और वो वाली. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज अजूबाज, आई एम टॉकिंग अबाउट जो लोग अजूबा होते हैं और उसके पीछे रीजन ये है कि वो ऐसी चीजें करते हैं जो कि नॉर्मल लोग सोच भी नहीं सकते करने की. जी हाँ, अब आपने स्काई डाइविंग करते हुए तो बहुत सारे लोगों को देखा होगा, लेकिन एक स्काई डाइविंग करते हुए इंसान को साथ में टैटू बनाते हुए देखा या सुना है कभी? वेल, फ्लोरिडा के एक टैटू आर्टिस्ट फ्रैंकी मैटास ने एक बहुत ही अजीबो गरीब और गजब का कारनामा कर दिखाया है. उन्होंने गिन्नीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, अपने आप को टैटू किया है उन्होंने स्काई डाइव करते हुए. जी हाँ, मतलब वो लिटरली 15,000 फीट जो है वो ऊंचाई में थे और 15,000 फीट जो है वो ऊंचाई में उन्होंने टैटू बनाया और वो बिल्कुल भी, मतलब उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि ओके, यू नो व्हाट, मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे ये नहीं लग रहा है, मुझे वो नहीं लग रहा है, मुझे टैटू बनाना है. मतलब लोग कहां से लाते हैं ये विल पावर, कहां से लाते हैं मुझे नहीं समझ आ रहा है. बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर मुझे बताइएगा. आप लोग बोलोगे कि हम लोग ऐसे ही टैटू नहीं बना पाते तो हमारा क्या होगा.

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब बर्थडे विश करने का वक्त हो गया है, क्योंकि एक बहुत ही चुलबुली और प्यारी सी अभिनेत्री का आज है जन्मदिन, और मैं बात कर रही हूँ हमारी अपनी सारा अली खान की। जी हाँ, सैफ अली खान और अमिता सिंह की ये बेटी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। जितनी खूबसूरत है उतनी ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी है, और इनफैक्ट आईवी लीग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी है। सो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि पटौदी खानदान जो है ना, पटौदी खानदान में जो ब्यूटी विद ब्रेन जो है वो रन कर रहा है। मतलब वहां के लोग खूबसूरत तो होते ही हैं, स्मार्ट तो होते ही हैं, लेकिन इंटेलिजेंट भी होते हैं, मतलब ऑल ऑफ देम। फिर चाहे वो सैफ अली खान हो, फिर सैफ अली खान के पिताजी टाइगर पटौदी हो, या कोई भी हो, उनकी बहन सोहा अली खान, उनकी बेटी सारा अली खान, सब के सब आईवी लीग कॉलेजेस से ग्रेजुएटेड है। और आईवी लीग कॉलेजेस में ऐसे ही एडमिशन नहीं मिलती है, लेट्स बी रियल, एंड वी ऑल नो दैट, राइट? सो या सारा अली खान, ब्यूटी विद ब्रेन्स, आपको हमारी तरफ से लिटरली लिटरली बहुत ही जबरदस्त सा जन्मदिन की मुबारकबाद। हम यही कहेंगे कि आप खुश रहें इस साल, और भी अच्छा अभिनय करें, और भी अच्छे तरह से सक्सेसफुल हो जाएं, सक्सेस की सीढ़ियां जो है वो चढ़ती जाएं, और हेल्दी रहे, वेल्दी रहे, और अगेन अपने फैंस को अपनी झलक दिखाते रहें, यही हमारी दुआ है और यही हम आपको विश कर रहे हैं यहां पर। अब क्योंकि सारा अली खान का जन्मदिन है तो सारा अली खान को का गाना तो प्ले करना पड़ेगा, राइट? सारा अली खान का जो गाना है जो मुझे याद आ रहा है, आई थिंक जो सबसे ज्यादा इस वक्त सेंस बनाएगा, वो है चकाचक, बिकॉज शी इज चकाचक इन ऑल द रियल सेंस।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
6: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance. Owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
7: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
8: बिजली का बिल देख कर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
9: जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाई मेरे अनियार शेनिविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब जरा बात कर लेते हैं उन सेलेस्टियल इवेंट्स की, उन नजारों की जो आपको रात को दिखने वाले हैं। वेल आज एक टोटल सोलर इक्लिप्स भी है जो कि हमें नजर नहीं आने वाला है, क्योंकि जब ये होगा तब यहां पर रात होगी। जी हाँ, रात होगी इसलिए हम उसको देख नहीं पाएंगे, बट दैट डजंट मीन कि आप इसको बिल्कुल नहीं देख पाओगे. वेल ऑफकोर्स आप इसे इंटरनेट पर देख सकते हो, पर दो और चीजें जो आप देख पाओगे वो है एक प्लैनेटरी अलाइनमेंट, जो कि अगर मौसम साफ रहा और बादल अगर आसमान में नहीं हुए तो आप उन्हें इजिली स्पॉट कर सकोगे. जी हाँ, आपको 4 से 5 प्लैनेट जो है वो एक ही लाइन में नजर आने वाले हैं, और वो प्लैनेटरी अलाइनमेंट जो है वो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है और बहुत ही गजब का नजारा होने वाला है. और ये पहली बार नहीं है जब ये हो रहा है, बल्कि ये काफी बार पहले भी हो चुका है. तीसरी चीज, पर्सिडीज मेटियोर शार. जी हाँ, पर्सिडीज मेटियोर शार जो कि हर साल अगस्त में आता है, वो फिर से आ गया है, और 12 और 13 की रात को ये पीक करने वाला है. उसका मतलब क्या है? वेल, उसका मतलब यही है कि आप किसी ऐसी जगह पर जाकर जहां पर आपको आसमान एकदम खूबसूरत तरीके से साफ नजर आए, जहां पर तारे और चांद की कोई रोशनी ना हो, एंड यू नो व्हाट द बेस्ट थिंग इज कि आज न्यू मून है, मतलब आसमान में चांद नहीं है, मतलब आसमान नॉर्मल से ज्यादा डार्क होगा. और जब न्यू मून होता है, मतलब अमावस्या होती है, तो कोई भी मेटियोर शार जो है वो ज्यादा खूबसूरती से दिखता है, क्योंकि चांद का ग्लो उसे फीका नहीं करता. जी हाँ, तो आज चांद का ग्लो आपको नजर नहीं आएगा, जिससे आप पर्सिडीज मेटियोर शार का मजा जो है वो ले पाओगे. और अगर आप ऐसे ही सेलेस्टियल इवेंट्स का इंतजार करते रहते हो, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेलेस्टियल इवेंट यू कैन लिटरली इमेजिन और सी. जी हाँ, इसके अलावा जो प्लैनेटरी अलाइनमेंट में जो प्लैनेट्स आपको नजर आने वाले हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको सुनाऊंगी एक और गाना.

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ मैंने आपको कहा था कि कैसे हम आपको बताने वाले हैं प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स में कौन कौन से प्लैनेट्स आपको नजर आने वाले हैं, क्योंकि आज की रात बहुत ही खास होने वाली है। पर्सिडीज मेटियोर शार पीक करने वाला है आज रात को और कल रात को। ऑफकोर्स प्लैनेटरी अलाइनमेंट भी आपको देखने को मिलेगा और टोटल सोलर इक्लिप्स भी है, पर जैसे मैंने कहा कि वो टोटल सोलर इक्लिप्स हमें यहां पर नजर नहीं आने वाला है, लेकिन हम उसे इंटरनेट या वीडियोज में तो देख ही पाएंगे, इतनी बात तो पक्की है। जी हाँ, तो आइए जरा बात करते हैं प्लैनेटरी अलाइनमेंट में क्या क्या आपको नजर आने वाला है। वेल, आपको नजर आएगा मर्करी, जो कि वेरी लो ऑन हराइजन आपको नजर आने वाला है। जुपिटर आपको नजर आएगा, उसके बाद आपको मार्स नजर आएगा, यूरेनस नजर आएगा, उसके बाद आपको सैटर्न नजर आएगा, उसके बाद आपको नजर आएगा नेपच्यून। सो बेसिकली 8 प्लैनेट्स में से आपको 6 के 6 जो है वो एक ही लाइन में नजर आने वाले हैं। जरूर देखिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये खूबसूरत नजारा। जैसे मैंने कहा कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हो चुका है। जैसे कि 2023 और 24 में ऐसी प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स जो है हमें काफी बार देखने को मिली थी और एक बार तो 7 के 7 प्लैनेट्स उसमें नजर आए थे, इस बार 6 हैं, बट दैट इज ऑल्सो अ वंडरफुल साइट। सो गो फॉर इट, जरूर देखिए खूबसूरत नजारे और पर्सिडीज मेटियोर शार को अगर आप देख पाओगे ना तो दैट विल बी ग्रेट लिटरली, क्योंकि आपने अगर मेटियोर शार कभी नहीं देखा है ना तो इट्स मैजिकल होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। ऐसा लगता है स्टार्स जो है वो आसमान से गिर रहे हैं और एक साथ इतनी सारे स्टार्स एक साथ गिरेंगे, उसी को मेटियोर शार कहते हैं। बट ऑफकोर्स वो स्टार्स नहीं गिरते हैं, वो ट्रेल होती है जो कि मेटियोर का जो एक आप कहोगे तो कचरा जो है वो पीछे रह जाता है और वही जो है वो छोटे छोटे फॉर्म में जो है वो गिरता हुआ हमें नजर आता है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो उधर से रिवॉल्व कर रही होती है, मतलब उधर से घूम कर जाती है। इसीलिए हमेशा अगस्त में पर्सिडीज मेटियोर शार जो है वो आपको नजर आता है। सो ये ट्रेल आपको नजर आएगी, लेकिन उसके लिए आपको आसमान जो है वो खूबसूरत चाहिए और थोड़ा सा साफ चाहिए, जो कि अभी मुझे नजर नहीं आ रहा, बट इसमें चेंजेस आ सकते हैं, बादल अगर इजाजत देंगे तो डेफिनेटली देखना होगा। इसी के साथ यहां पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खबरों की दुनिया में। जी हाँ, खबरों की दुनिया का रुख करने का वक्त हो गया है क्योंकि खबरों की दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत पर 100% अतिरिक्त टैरिफ की आशंका के मद्देनजर पीटर नवारो बोले ट्रंप और पीएम मोदी के बीच अच्छे संबंध, टैरिफ पर दोनों खुद बात करेंगे। जी हाँ, सो अमेरिकी राष्ट्रपति के काउंसलर पीटर नवारो ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अच्छे संबंध है और दोनों नेता टैरिफ समेत अन्य मुद्दों को आपस में सुलझा लेंगे। जी हाँ, न्यूज एजेंसी AANIA के एक सवाल के जवाब में नवारो ने यह बात लिंडसे ग्राहम बिल को लेकर कही। इस बिल को अमेरिकी राष्ट्रपति का समर्थन हासिल है और इसमें भारत पर संभावित 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रावधान है। उनसे पूछा गया था कि इसका भारत अमेरिकी व्यापार वार्ता पर क्या असर पड़ सकता है, तो नवारो ने कहा कि राष्ट्रपति और आपके प्रधानमंत्री के बीच में बहुत अच्छे कामकाजी संबंध हैं, वे इस मुद्दे को आपस में सुलझा लेंगे और मेरे लिए उनके बीच आने की कोई बात नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए नवारो ने कहा कि करीब 6 से 8 महीने पहले उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स में एक लेख लिखा था। इसमें उन्होंने दावा किया था कि यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले भारत रूस के तेल कारोबार में शामिल नहीं था, लेकिन बाद में भारत इसमें काफी शामिल हो गया और रूस की ओर से बड़ी मात्रा में रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद बेच रहा था। नवारो ने कहा कि ये मुद्दा अब सुलझ चुका है और उन्होंने ये भी दावा किया है कि उस लेख के बाद इंटरनेट पर भारतीय लोगों की ओर से उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा, मैं बस इतना कहूंगा कि ऐसा मत कीजिए, अमेरिका में हम समस्याओं का इस तरह हल नहीं करते। जी हाँ, ये कहा है पीटर नवारो ने।

जी हाँ दोस्तों, वही खबरों की बात हो रही है और कोलंबिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 180 से ज्यादा हुई। बचाव कार्य अभी भी जारी है। जी हाँ, सो एक दिन पहले आए भूकंप में, जो कि कोलंबिया में आया था, जिसकी तीव्रता थी 7.4, उसमें लोगों के मरने की संख्या जो है वो बढ़ गई है। सो कोलंबिया में सोमवार को आए तेज भूकंप के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बचाव कर्मी मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। भूकंप में अब तक 180 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सबसे ज्यादा नुकसान कैली और पेरेरा शहरों में हुआ है। 7.4 तीव्रता का भूकंप सोमवार सुबह 7:34 पर आया। इसके झटके पश्चिमी कोलंबिया के सैकड़ों मील दूर तक महसूस किए गए। मंगलवार को भी भूकंप के बाद के झटके, यानी कि आफ्टर शॉक्स, महसूस किए जाते रहे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों की संख्या 181 यानी कि 181 है। हालांकि स्थानीय अधिकारियों से मिले आंकड़ों को जोड़े तो ये संख्या 240 से भी ज्यादा हो सकती है। राष्ट्रपति एबेलाडो डे ला एस्प्रियेला ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। राष्ट्रपति मंगलवार को सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में से एक पेरेरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि भूकंप में करीब 2600 लोग घायल हुए हैं, जबकि लगभग 200 लोग अभी भी लापता हैं। उन्होंने बताया कि 1100 यानी कि 1100 से ज्यादा घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं। 8000 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है। सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक परेरा और कैली जैसे शहरों में कई लोगों ने खुले में रात बिताई। कुछ लोगों के घर पूरी तरह तबाह हो गए थे, जबकि कई लोग इमारतों के दोबारा गिरने के डर से घरों के अंदर गए ही नहीं।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ खबरों की बात हो रही है। और अमेरिकी सेना का दावा है कि ईरान जा रहे जहाज को रोकने के लिए दागी है मिसाइलें। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उसने ईरान के एक बंदरगाह की ओर जा रहे एक जहाज को रोककर उसके स्टीयरिंग सिस्टम को नाकाम कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि पनामा के झंडे वाला ये जहाज ओमान की खाड़ी से गुजरने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी कमांड के मुताबिक जहाज का मकसद ईरानी बंदरगाह तक पहुंचकर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को तोड़ना था। बयान में कहा गया कि जहाज के नागरिक चालक दल ने अमेरिकी सेना की ओर से दी गई बार बार चेतावनियों को नजरअंदाज किया। इसके बाद अमेरिकी नौसेना के एक MH-60 हेलीकॉप्टर ने जहाज के इंजन रूम पर दो हेलफायर मिसाइलें दागी। सेंट्रल कमांड ने कहा कि ये जहाज अब ईरान की ओर नहीं जा रहा है। सेटकॉम के मुताबिक मंगलवार 11 अगस्त तक 55 वाणिज्यिक जहाजों का रास्ता बदला गया है, जबकि सहयोग नहीं करने वाले 3 जहाजों को नाकाम किया गया है और 2 जहाजों की तलाशी भी ली गई है।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Queensland vich har saal jangla vich ag lagdi hai. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ, ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ।
4: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। Phone 3630-5438, 3630-5438 या mobile 0415-952-660, 0415-952-660।
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशे निविया के साथ। दोस्तों, इसी के साथ एक चीज जो कि कल मैंने इंटरनेट स्क्रॉल करते हुए देखी और मुझे ऐसा लगा कि इतनी ज्यादा सेंस बन रही थी उस चीज में कि मुझे मेरे लिसनर्स के साथ, प्यारे प्यारे लिसनर्स के साथ उसे शेयर करना चाहिए। सो बात कुछ ऐसी थी कि वहां पर लिखा हुआ था कि अमंग ऑल द पीपल हु हेट मी, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, अमंग ऑल द पीपल हु हेट मी नॉट वन ऑफ देम ओन्स अ रोल्स रॉयस, वेरी लो बजट एनिमीज आई हैव। जी हाँ, अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। उसमें लिखा हुआ था कि अमंग ऑल द पीपल हु हेट मी नॉट वन ऑफ देम ओन्स अ रोल्स रॉयस, वेरी लो बजट एनिमीज आई हैव। सो बेसिकली इसका मतलब यही है और ये यही आपको इंस्पायर करने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके जो एनिमीज है, जो आपको थोड़ा नीचा फील करवाते हैं, कभी कभी आपको लो फील करवाने की कोशिश करते हैं, बुरा फील करवाने की कोशिश करते हैं, उनमें से किसी के पास भी अगर रोल्स रॉयस नहीं है तो वो एकदम लो बजट एनिमीज है और आपको उन पर ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। उनसे दूर रहिए और उनको भाव ही मत दीजिए, मतलब उनको ऐसा इग्नोर कीजिए कि इग्नोरेंस भी भूल जाए कि इग्नोर करना क्या होता है। जी हाँ, यहाँ पर ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि हमेशा हमारी जिंदगी में कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है या हमको मिल जाता है जो हमको लो फील करवाने की कोशिश करता है, बुरा फील करवाने की कोशिश करता है। बट एट द एंड ऑफ द डे जो इंसान हमें बुरा फील करवाने की कोशिश कर रहा है, अगर उसके पास रोल्स रॉयस नहीं है तो इतना लो बजट एनिमी हमें थोड़ी चाहिए, राइट? यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप में से कितने लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं? जी हाँ, वर्क फ्रॉम होम करने वाली जनता जो है वो काफी है। और अगर आप लोग वर्क फ्रॉम होम करते हुए मेरे प्रोग्राम को सुनते हो तो मतलब वो तो और भी बहुत ही जबरदस्त बात है। लेकिन यहाँ पर मैं वर्क फ्रॉम होम के बारे में बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वर्क फ्रॉम होम करते करते बहुत सारे लोग वायरल हो चुके हैं। आप लोग बोलोगे वायरल हो चुके हैं, जी हाँ। तो वर्क फ्रॉम होम करने के चक्कर में लोग जो है तैयार होकर ऑफिस नहीं जाते, तो ऑफकोर्स वो घर वाले कपड़ों में बैठे होते हैं। कभी कभी कुछ लोग जो है वो सब्जी काट रहे होते हैं वर्क फ्रॉम होम करते हुए, और या ये भी वायरल हो रही है चीजें। कुछ जो है लेडीज जो है वो फेस पैक लगा के बैठी होती हैं क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं है, नोबडी इज वॉचिंग, आपको सिर्फ काम करना है और आप ये सब कर रहे हो। नाउ ये बहुत सारी चीजें जो है वो बड़े ही फनी तरीके से वायरल हो रही है जी। कुछ वक्त पहले की बात है, एक बॉस एक सुपीरियर जो है वो अपने सारे एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग ले रहा था, लेकिन एक जो फीमेल थी उन्होंने अपना कैमरा जो है वो बंद किया हुआ था, और जब वो उन्हें कहते हैं कि कैमरा ऑन करो तो वो कैमरा ऑन करती है तो उन्होंने अपने चेहरे पर फेस पैक लगाया होता है जी हाँ। और फिर जब वो कहते हैं कि ओ ओ ओ ओ बिकॉज ही वॉज लाइक What is happening? Because he was not expecting कि जो लेडी है वो सामने से जब कैमरा ऑन करेगी तो मेरे सामने एक लिथा पिता सा चेहरा जो है वो मुझे नजर आने वाला है। और फिर वो कुछ कह ही नहीं पाते, लेकिन सामने से वो लेडी जो कि फेस पैक लगा के बैठी होती है वो कहती है यू नो वट इट्स अ ग्रीन टी, यू नो इट्स अ ग्रीन टी फेस पैक यू शुड ट्राई टू, अपने बॉस को ये कहती है। सो जेंजीज जो है ना वो इतने मजेदार हो गए हैं, इतने ज्यादा खतरनाक हो गए हैं कि उनको लगता है कि हर एक चीज मजाक है और हर एक चीज जो है वो हल्के फुल्के तरीके से लेनी चाहिए। यू डोंट Have to be serious, और हमको भी सीरियस बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब जो वायरल हुआ है वो किस्सा और भी ज्यादा फनी है क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल कॉर्पोरेट सेक्टर में जब ऐसे वाकये होते हैं तो नॉर्मल बात होती है, लेकिन जब पॉलिटिशियन इस चीज के लिए फेमस हो जाए किसी कंट्री की, वो तो और भी ज्यादा फनी है। सो एक पॉलिटिशियन जो है जिन्होंने अपनी काउंसिल मीटिंग को ज्वाइन किया अपने घर से, लेकिन एग्जैक्टली घर से नहीं बल्कि अपने बाथरूम से, जी हाँ, वो अपने बाथरूम में बैठी हुई थी, उनके पीछे उनकी लॉन्ड्री नजर आ रही थी और दिख रहा था कि वो अपने बाथरूम में ही बैठी हुई है। ऊपर से वो रेडी थी लेकिन नीचे से पता नहीं क्या हिसाब किताब था। बट द थिंग इज कि जब लोगों ने उन्हें देखा और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ मैं हूँ अपने बाथरूम में, बट व्हाट अबाउट इट, और वो बस सीधा अपनी मीटिंग में आगे जो है वो बोलना शुरू कर देती है। लाइक लिटरली अ न्यूजीलैंड पॉलिटिशियन जो है इज गेटिंग वायरल बिकॉज ऑफ हर मीटिंग जो कि उन्होंने ज्वाइन की फ्रॉम हर बाथरूम। सो यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर वाले अगर इस बारे में बुरा मानते हैं ना कि उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो कहीं से भी मीटिंग्स ले रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, मैं कहती हूँ यहाँ तो पॉलिटिशियंस भी ये सब कर रहे हैं, अब आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर आपने ये क्लिप नहीं देखी है वायरल तो जरूर देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। और ये भी बताइएगा कि क्या आपने भी कुछ खुराफाती काम ऐसा किया है कि कभी आप कुछ खतरनाक कर रहे हो और आपके बॉस ने इंसिस्ट किया हो कि यू नो व्हाट टर्न ऑन योर कैमरा, और जब उन्होंने कैमरा आपसे ऑन करवाया हो तो आप भी कुछ खतरनाक कर रहे हो और आप ऐसे इंसिडेंट में स्टक हो गए हो, या जरूर बताइएगा। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए जो कि बारिश से रिलेटेड है, और ये बारिश वाला गाना हम इसलिए प्ले कर रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है, और बारिश हो रही है तो इसलिए हम बारिश वाला गाना प्ले करेंगे।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड का। और ओल्ड इज गोल्ड हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खास है। उसके पीछे रीजन ये है कि हम आपके लिए पुराने गाने ही प्ले करेंगे अब, और पुराने गानों के साथ हम आपको सुनाएंगे पुराने किस्से भी। तो ये खूबसूरत सा समा जो है वो शुरू होने वाला है, और अगर आप लोगों की कोई फरमाइश है तो जल्दी से भेज दीजिए, क्योंकि हमारे पास फाइल पहले से ही फरमाइशें लाइंड अप है। और अगर आप भी हिस्सा बनना चाहते हो हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से सेगमेंट का, तो जल्दी से आ जाइए अपनी फरमाइशों के साथ। और अब शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे गाने के साथ, जो कि रफी साहब का है। और रफी साहब के गाने के साथ शुरुआत होगी सेगमेंट की, तो इससे बढ़िया शुरुआत और क्या ही हो सकती है।

जी हाँ दोस्तों, मतलब ऑफ कोर्स बचने की कोशिश अगर आप करोगे भी तो मोहब्बत अगर होनी होगी वो हो ही जाएगी। जी हाँ, तो बचने की कोशिश करके कोई फायदा नहीं है। जी हाँ, टाइमिंग की बात है, जिस वक्त जो होना होगा वो होके रहेगा। यू कांट चेंज दैट। दोस्तों इसी के साथ अब जो है मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। वेल वेल वेल, ये फरमाइश आई है हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर प्रेमा आंटी जी की तरफ से। जी हाँ, जो गाना उन्होंने किया है फरमाइश, उसका नाम है जिसे तू कबूल कर ले। जी हाँ, जिसे तू कबूल कर ले। ये खूबसूरत सा गाना जो है वो मूवी है देवदास का, और ये वो वाली देवदास नहीं है, वेल शाहरुख वाली नहीं है, लेकिन दिलीप साहब वाली है जो कि 1955 में आई थी। जी हाँ, इस मूवी को करने के लिए लिटरली दिलीप साहब ने बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स को, बड़े प्रोजेक्ट्स को छोड़ा था, बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ देवदास। देवदास जो है एक बहुत ही लेजेंडरी कहानी है और इसे लिखा बहुत खास तरीके से गया है, और इसी वजह से दिलीप साहब उस यूनिवर्स का पार्ट बनना चाहते थे, एंड ही डिड इट। जी हाँ, और ना सिर्फ उन्होंने किया बल्कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से किया। सो या देवदास जो कि 1955 में आई थी, क्या आपने देखी है मुझे जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच प्रेमा आंटी, हमेशा की तरह खूबसूरत गाने फरमाइश करने के लिए, रेकमेंड करने के लिए। ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए, और ये रहा आपके लिए ये प्यारा सा गाना।

जी हाँ दोस्तों, देवदास बहुत ही खूबसूरत कहानी है। ट्रैजिक है बट खूबसूरत है, प्यार खूबसूरत है। जी हाँ, और प्यार ना मिला उसकी वजह से जो ट्रैजेडी हुई उसको भी खूबसूरत तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। जी हाँ, अब फिर चाहे ये वाली देवदास हो जो कि 1955 में आई, या बाद वाली देवदास हो जिसे संजय लीला भंसाली ने बनाया, लेकिन एक चीज जो है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है, और जो हमें जिससे कुछ सीखना चाहिए वो एक ही चीज है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्यार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई वक्त था जब उस प्यार को पाना जो है वो मुश्किल हो जाता था। मतलब अब वाला टाइम जो है वो डिफरेंट है। लोगों को प्यार एक बार नहीं होता है, दो बार, तीन बार, चार बार होता है। जी हाँ, और वो प्यार ही होता है या कुछ और होता है वो भी एक अलग बात है, बट उस वक्त प्यार होता था, खूबसूरत होता था, रियल होता था, प्योर होता था, और उस प्यार के लिए लोग क्या नहीं कर जाते थे। इसीलिए हमारी आज की जनरेशन को ये सीखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि प्यार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और अगर ये मुकम्मल करने का अगर आपको रास्ता मिल रहा है तो उसे छोड़े ना। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारी लव स्टोरीज है हिस्ट्री में जो कि इतनी ट्रेजिक है, इतनी ज्यादा ट्रेजिडी वाली है, इतनी ज्यादा ट्रेजिक है कि उनको देखकर हमें लगता है कि ओ माय गॉड, अगर ये दोनों मिल गए होते तो क्या बात होती। वेल ऑफ कोर्स, अगर वो दोनों मिल गए होते तो शायद वो इतनी मेमोरेबल नहीं होती, बट द थिंग इज कि आज की जनरेशन को यही समझना चाहिए कि एक वक्त था जब लोगों को प्यार नहीं मिलता था, उनका प्यार मुकम्मल नहीं हो पाता है। सो आज के वक्त जब आपका प्यार मुकम्मल हो सकता है उसको कभी भी फॉर ग्रांटेड ना लीजिए। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए, मेरी तरफ से नहीं है, अगेन ये भी एक गाना है जो कि रिकमेंडेड सॉन्ग है, और ये रिकमेंडेशन आया है अब बहुत ही खास शख्सियत की तरफ से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे बॉस मिस्टर जतिश पूरन जी की तरफ से। गाने का नाम है साथी ना कोई मंजिल। जी हाँ, रफी साहब का गाया हुआ ये गाना, बम्बई का बाबू, यानी कि बम्बई का बाबू जो है मूवी उसका गाना है, देवानंद साहब और सुचित्रा सेन है इस मूवी में, और उन्हीं का ये गाना है। रिकमेंडेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, और ऐसा कहा गया है कि ये बहुत सैड गाना है लेकिन रियलिटी है, और रियलिटी है तो मतलब कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए सुनते हैं इसको। थैंक यू सो मच सर, आपके रिकमेंडेशन हमेशा जबरदस्त होते हैं, और ऐसे ही मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, अगर आप भी रिकमेंड करना चाहते हो, कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हो या फिर रिक्वेस्ट करना चाहते हो, तो जल्दी से आ जाइए। और ये रहा ये जबरदस्त सा गाना आप सबके लिए।

क्यों कहती हूँ कि कुछ चीजें उस एरा में ही खत्म हो गई, मतलब उस एरा में थी और वहीं पर खत्म हो गई, वो कैरी फॉरवर्ड हुई ही नहीं, हमारे तक पहुंची ही नहीं। उसके पीछे रीजन ये है कि आपने ये गाना सुना, आपने इसके बोल सुने होंगे, राइट? कितनी खूबसूरती से इतने पावरफुल लिरिक्स को उस धुन में पिरोया गया और उसके बाद रफी साहब ने उसको अपनी आवाज से संजोया। अब आजकल के लिरिक्स में कहीं आपको ऐसी बात दिखती है? जी हाँ, आप खुद ही अपने दिमाग में सोचिए कि कौन सा ऐसा गाना है अभी रीसेंट टाइम्स में जिसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो कि वाह क्या लिखा है, मतलब जिसने भी लिखा है क्या लिखा है। कोई ऐसा गाना आपके दिमाग में आता है? वेल, मेरे दिमाग में तो बिल्कुल नहीं आता। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कुछ चीजें उस एरा में थी और उस एरा में ही रह गई, वो हमारे तक पहुंची नहीं, और ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, ये तो बहुत बुरी बात है हमारे लिए। बट एक चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि इस गाने में जितनी भी चीजें बोली गई हैं वो हर एक चीज रियलिटी है। एंड नो वंडर सर ने जब इस गाने को रेकमेंड किया, उन्होंने कहा कि एक सैड गाना है बट रियलिटी है, एंड रियलिटी सैड ही है। अगर आप देखो तो रियलिटी सैड ही लगेगी। जो खुशियां हम ढूंढते हैं वो रियलिटी नहीं होती, वो इल्यूजन होता है, और वो इल्यूजन जो है वही हमें खुशी देता है। लेकिन वही तो बात है जिंदगी की, अगर हमें खुशी इल्यूजन देती है तो हम उसके पीछे ही भागेंगे, अगर हमें रियलिटी दुख देती है, सैड फील करवाती है, तो हम उससे भागेंगे ही, एंड यही जिंदगी है। जी हाँ, देवानंद साहब के बारे में मैं इतना तो कह सकती हूँ कि उन्होंने कुछ ऐसे गानों का वो हिस्सा बने हैं जो कि लिटरली हमें जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं, लाइक ये गाना और उनका एक बहुत ही फेमस गाना, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुओं में उड़ाता चला गया। मतलब क्या गाने है, राइट? मतलब देवानंद साहब की झोली में लिटरली ऐसे मेमोरेबल गाने हैं जो कि रियलिटी से भरपूर हैं बट फिर भी बहुत ज्यादा रियल है। जी हाँ, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, एंड आई थिंक आज की टोन थोड़ी सी सैडनेस की तरफ चली गई थी, विच आई एम नॉट कंप्लेनिंग एट ऑल, क्योंकि कुछ गाने सैड होकर ही आपको सच्चाई जो है वो अनुभव करवाते हैं। सो एक और गाना मेरी तरफ से जो कि सच्चाई ही बताने वाला है, लेकिन सच्चाई के साथ एक और चीज बताएगा कि कैसे हम अपने दुखों को बहुत सीरियसली लेते हैं, कभी कभी हम अपने बहुत छोटे दुखों को बहुत हैवीली लेते हैं, और कभी कभी दुख बहुत बड़े होते हैं और हम उनको फिर भी हल्का लेते हैं। जी हाँ, सो दैट्स अबाउट इट, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, जैसे कि मैंने कहा मजे करते रहिए। लास्ट सॉन्ग मेरी तरफ से, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, आई डोंट नो, मैं बहुत छोटी थी जब मुझे ये गाना मैंने सुना था और मैं इसकी फैन हो गई थी, तो आई गेस इस सैड थीम में मेरी तरफ से जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ये है। बाय बाय, सी यू, टाटा।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo.

0: ये
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रुसवानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन में कंस्ट्रक्शन की भारी कमी और रात का काम। जी हां, ब्रिस्बेन में 2032 ओलंपिक की तैयारियों और देश में 12 लाख नए घर बनाने के लक्ष्य के बीच एक बड़ी चुनौती सामने आई है। शहर में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और कारीगरों की इतनी कमी हो गई है कि बिल्डरों को अब दिन के बजाय रातों रात सर्च लाइट की रोशनी में कंक्रीट डालने का काम करना पड़ रहा है। वहीं ब्रिस्बेन को मिला नया सिल्वर रोड बाइकवे। जी हाँ, ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल ने साइकिल चलाने वालों के लिए एक बड़ी राहत दी है। काउंसिल ने सिल्वन रोड बाइकवे के नए और सुरक्षित डिजाइन को हरी झंडी दे दी है। ये नया रास्ता वेस्टर्न फ्रीवे शहर के मध्य को सीधे जोड़ेगा, जिससे हर रोज 3,000 से ज्यादा साइकिल सवारों को सुरक्षित सफर करने को मिलेगा। वहीं ब्रिस्बेन ब्रोंकोस मनाएगा डडली चॉइसेस वीकेंड। जी हां, ब्रिस्बेन की मशहूर रग्बी टीम ब्रिस्बेन ब्रोंकोस इस शनिवार को सनकॉप स्टेडियम में खास मैच खेलने उतर रही है। एनआरएल इंडिजिनस राउंड के तहत टीम की पुरुष और महिला दोनों टीमें आदिवासी यानी कि फर्स्ट नेशन स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़ी विशेष जर्सी पहनकर मैदान में उतरेंगी। इसके साथ क्वींसलैंड के एका शो में 16 साल की लड़की बनी चैंपियन। जी हां, ब्रिस्बेन में चल रहे क्वींसलैंड के पारंपरिक और मशहूर एका शो से एक दिलचस्प खबर आई है। बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के 16 साल की होलियन हालम ने नेशनल जूनियर ग्रेन जजिंग चैंपियनशिप में पूरे ऑस्ट्रेलिया में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं साउथ ब्रिस्बेन में घरेलू हिंसा मामले पर पुलिस की सख्ती। ब्रिस्बेन के दक्षिणी इलाके में हुई एक दुखद घटना के बाद क्वींसलैंड पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन और हत्या का मामला दर्ज कर उसे कस्टडी में ले लिया है। इसके साथ हाउसिंग प्रोजेक्ट में तेजी लाने की तैयारी। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने नेशनल हाउसिंग अकॉर्ड के तहत राज्यों के साथ मिलकर नए घरों की मंजूरी और जमीन आवंटन की प्रक्रिया को तेज करने का फैसला किया है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले आज का सूर्य ग्रहण और भारत में असर। जी हां, आज यानी 12 अगस्त को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लग रहा है, लेकिन भारत में रह रहे लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। रात के समय होने की वजह से हमारे यहां ना तो कोई सूतक काल मनाया जाएगा और ना ही किसी तरह के परहेज की जरूरत है। इसके साथ पीएम मोदी ने लॉन्च की पूर्व राष्ट्रपति की किताब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक का विमोचन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने युवाओं से खास अपील की कि सोशल मीडिया रील्स और शॉर्टकट्स के चक्कर में ना पड़ें, बल्कि किताबें पढ़कर महापुरुषों के संघर्षों में सीख लें। वहीं ऑनलाइन फ्रॉड पर सरकार का बड़ा हथौड़ा। साइबर फ्रॉड और फर्जी लेन या लोन ऐप्स पर सरकार ने बड़ी स्ट्राइक की है। गृह मंत्रालय की साइबर विंग ने देश में 3,700 से ज्यादा फर्जी ऐप्स को तुरंत ब्लॉक कर दिया है। इसके अलावा फ्रॉड में इस्तेमाल हो रहे 15 लाख से भी ज्यादा सिम कार्ड्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं लोकसभा में पास हुआ केरलम बिल। संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में केरलम अल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026 पास हो गया है। इसके साथ विदेशी सैलानियों के लिए ई वीजा के 11 नए रास्ते। भारत आने वाले विदेशी टूरिस्ट के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने देश में 11 नए ई वीजा एंट्री पॉइंट शुरू कर दिए हैं, जिनमें भोपाल और तिरुपति एयरपोर्ट्स के साथ साथ अटारी बॉर्डर जैसे बड़े लैंड पोर्ट्स भी शामिल हैं। इसके साथ देश में ग्रीन एनर्जी का बड़ा सौदा। आरपी संजीव गोयनका ग्रुप ने क्लीन एनर्जी सेक्टर में बड़ा कदम बढ़ाया है। ग्रुप की कंपनी पूर्वा ग्रीन पावर ने 4,859 करोड़ रुपए में 1.4 गीगावाट की विशाल सोलर प्रोजेक्ट खरीदने का ऐलान किया है। इसके साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले यूरोप में 27 साल बाद दिखेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण, जी हाँ, यानी कि टोटल सोलर इक्लिप्स। जहां भारत में ग्रहण नहीं दिख रहा और ऑस्ट्रेलिया में भी, वहीं यूरोप के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। पूरे 27 साल बाद यूरोप के स्पेन, आइसलैंड और ग्रीनलैंड जैसे देशों में आज पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखने वाला है। इसके साथ आसमान में अद्भुत नजारा, 6 ग्रह और उल्का पिंडों की बारिश, जी हाँ, आज 12 अगस्त को अंतरिक्ष में एक अनोखी खगोलीय घटना हो रही है। कल सुबह आसमान में 6 ग्रह गुरु, बुध और मंगल, अरुण, शनि और वरुण एक साथ लाइन में दिखेंगे। वहीं आज रात आसमान से पर्सिडीज नाम के टूटते तारों के जो मिट्योर्स हैं वो भी दिखने वाले हैं। वहीं अमेरिका का इमिग्रेशन पर बड़ा फैसला, अमेरिकी सरकार ने वीजा और इमिग्रेशन के नियमों में बदलाव किया है। अब ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप और एसाइलम, शरण जैसी तमाम अहम अर्जियों को सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किया जाएगा। वहीं कोलंबिया में भूकंप में भारी नुकसान, साउथ अमेरिका के देश कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का बड़ा भूकंप आया है। भूकंप की वजह से परेरा शहर समेत कई इलाकों में 60 से ज्यादा इमारतें ढह गई और रेस्क्यू टीमें लगातार राहत कार्य में लगी हुई हैं। वहीं राष्ट्रमंडल खेलों के बाद 5 एथलीट गायब, जी हां, कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में हुए जो है वो खत्म हो गए हैं और उनके खत्म होने के बाद एक बड़ी ही हैरान करने वाली खबर आई है। युगांडा और पाकिस्तान के 5 बॉक्सर खिलाड़ी अपने दल से अचानक गायब हो गए हैं। स्थानीय पुलिस उनकी तलाश कर रही है और माना जा रहा है कि उन्होंने वहां शरण मांगी है। वहीं फीफा प्रमुख पर विवाद गहराया, वर्ल्ड फुटबॉल की संस्था फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो पर विवाद खड़ा हो गया है। यूरोप और एशिया के फुटबॉल संघों ने उन पर आरोप लगाया है कि वे प्राइवेट निवेशकों को वर्ल्ड कप के शेयर बेचने की कोशिश करके संस्था का भरोसा तोड़ रहे हैं। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले भारत बनाम अफगानिस्तान T20 सीरीज का ऐलान, क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर। भारत और अफगानिस्तान के बीच सितंबर महीने में 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। वहीं टेनिस में ईगा स्वियातेक का शानदार प्रदर्शन, कनाडा में खेले जा रहे कैनेडियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पोलैंड की स्टार खिलाड़ी ईगा स्वियातेक ने अपना दबाव कायम रखा है। वहीं शतरंज में प्रज्ञा नंदा की धमाकेदार जीत, अमेरिका में चल रहे प्रतिष्ठित स्क्विफील्ड सिंकफील्ड कप चेस टूर्नामेंट में भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञा नंदा ने शानदार खेल दिखाया है। वहीं फेंसिंग में भारत के पदकों की बौछार, नाइजीरिया में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने इतिहास रच दिया है। करण सिंह और शेरजिन शांति मोल ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं। वहीं हॉकी विश्व कप का नया फॉर्मेट लागू, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने 2026 हॉकी वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में बड़ा बदलाव किया है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।
0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन, जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। ਨਾਲ ਹੀ 2032 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਵੈਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟ ਵਿਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਫਾਰ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899 and quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan
10: और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है।

ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: मम्मी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट विरे। अतुल भारद्वाज जी नो अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नो हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich ag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di ag to bachav di yojana banao ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नू सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकारित।
2: सत श्री अकाल मदाब नमस्कार दोस्तों, मैं हां तुहाडा प्रथक भजन। एक बार फिर सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असीं तुहाडे कोल आ रहे हैं।
3: The legend, Harbhajan Mann, live in Brisbane,
4: Saturday 15th August, 6:30 PM.
2: Milde hain ji Brisbane vich.
4: At Brisbane Central Auditorium, Mount Cravat. Tickets at Premier Tickets.
2: Sat Sri Akaal, madam, namaskar, dosto, main haan tuhada Prathak Bhajan. Ek var phir, Satrangi Ping Australia Tour 2026 leke assi tuhade kol aa rahe hain.
3: The legend, Harbhajan Mann, live in Brisbane,
4: Saturday 15th August, 6:30 PM.
2: Milde hain ji Brisbane vich.
4: At Brisbane Central Auditorium, Mount Cravat. Tickets at Premier Tickets.

0: हाँ जी जी अनु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 FM ते जी आरजे संदेश अलग दे नाल तुसी बने हुए हो। देखो, बनारस की तवायफ गौहर जान का प्यार हुण इस दी गल करनी तां बनदी बनदी है। देखो जे गल करिए ना, उन्हां नाल कोई गलबात नहीं हुई पर उन्हां ते लट्टू सी। कौन ओ जिन्हां दी गौहर जान दी गल चल रही हैगी है ते जिस इंसान नूं मिले सी, मैं पहला दस्या सी ना नाम, नाम सी असलम ते लट्टू सी ते उन्हां दे गहरे प्यार करन लगी सी। एक दिन ना बहुत डूंघा प्यार, एक दिन ओ गायब हो गए। पुछताछ करन ते उन्हां नूं पता चलिया कि ओ मिर्जापुर काम करन गए हैगे ने, इसलिए गाने विच उन्हां दा जिक्र हैगा है। दिल्ली स्थित भोजपुरी संगीत अते साहित्य दे विशेषज्ञ जिहड़े माहिर हैगे ने निराला विदेशिया, ओ कहंदे ने कि बहुत बाद विच उन्हां नूं पता लग्या कि अंग्रेजां ने उन्हां नूं रंगून भिजवा दिता। इस गाने विच अगे दी लाइन इसे ते हैगी है, इस नाल पता चलदा है कि अपने प्रेमी दे लई किस हद तक जान नूं तैयार सी।
1: Show mercy on it.

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 FM ते चार छे संदेश अलग दिनाल से बड़े हुए। देखो एक गाना ना कचौड़ी गली हैगा जेड़ा, ये गाना पूर्वी उत्तर प्रदेश ते बिहार के कुछ हिस्सों विच फैले पूर्वांचल ते तो हजारा पुरुषों के पलायन का भी मतलब संबंध रखता है, जो 19वीं सदी दे विच ना एग्लो बर्मी युद्ध के दौरान शुरू होया सी। हजारा आम नागरिकां नू अंग्रेजां वल्लों ना जबरदस्ती रंगून या बर्मा विच सिपाही बना के भेजा गया सी। 1824 तो 1937 तक बर्मा ब्रिटिश शासन के अधीन सी। हालांकि गाने विच उड़ल जहजवा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पर इस परेना जेड़े पुरुष सीगे नू अक्सर भीड़भाड़ वाले स्टिम्पशियों विच भेजा जांदा सी जो कदे कलकत्ता तो रवाना हुंदे सीगे।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, ताँ जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसोनी 101.1 ते जी अच्छे संदेश अलग दराल से बने हुए हो। और देखो कुछ चौड़ी गली बारे में तो इन्ना कुछ दसता है तो उसी देखियो जरूर एक बारी गीत ते तुसी जेडे घर दे विच बुजुर्ग होणगे ना शायद उन्हां नूं कुछ पता होवे या फिर गूगल करियो तो थानू पता लग जाना है कि यह गल्ला किनिया कुछ सच है क्या ने। हुण देखो इस दे नाल होर भी गल्ला है ने जुड़िया हुई जिवें 1885 दे युद्ध दा जिक्र 40,000 सैनिका दे विचों ना 15,000 मलेरिया पेचिश ते घने जंगलां विच होई लड़ाई दे कारण शहीद हो गए सी। हालांकि युद्ध 1885 विच खत्म हो गया सी पर ब्रिटिश जिहड़ियां नीतियां सीगियां उन्हां दे कारण 1900 दे दहाके विच भी पलायन जारी रहा। युद्ध ने व्यापक आर्थिक अस्थिरता लिया दी सी ते बर्मा विच बंदरगाह शहरां विच रोजगार दे अवसर उपलब्ध सी। इन्हां लोकां ने बंदरगाहां चौलां दीआं मिलां ते दिहाड़ी मजदूरां दे रूप विच काम कीता। बर्मा ब्रिटिश प्रणाली यानी कि काला पानी दे लई मशहूर सी इह जिसके तहत भारतीय कैदियां नूं अंडमान ते सैलूलर जेल विच कैद कीता जांदा सीगा।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं.
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड ऑल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omsorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए. इंडिया नंबर 8448381360. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर.
4: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है. यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है. जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ, ताजे हर कोई जान सके कि की करना है. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ. अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो. होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो. क्वींसलैंड सरकार, ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। जस्ट सेंड $30 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन फिजी एंड बी इन द ड्रॉ। और जानकारी के लिए विजिट करें digicelpacific.com।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

कहानी पूरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखें। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज लहंगा सलवार कमीज पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं ओरिजिनल डीवीडी सीडीज फोन कार्ड्स प्रीपेड चार्ज कार्ड्स फैंसी ज्वेलरी बैंगल्स गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: से जो बरसो कर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए।
1: ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त ए दोस्त ए दोस्त।

0: ayah suku suku.
1: आई आई या करूं मैं क्या सुकू सुकू।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटन यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं.
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल. ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड ऑल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सॉर्ग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omsorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360. ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल श्रोताओं। जीवन आधार की नैया में आज एक बार फिर से आप हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। जीवन आधार हमारी वो प्रस्तुति जिसके साथ हम करते हैं अपनी और आपकी सुबह की एक खास शुरुआत। आज भी स्मरण करेंगे उस परम शक्ति का, उस खुदा का, उस ईश्वर का, उस वाहेगुरु का, उस जीजस का, जिसने हमें जीवन का सही संदेश दिया है, जीवन की सही शिक्षा हम तक पहुंचाई है और जिसके लिए हमारी सारी प्रार्थनाएं हैं। आइए आगे बढ़ते हैं जीवन आधार में इस एक अगले गीत के साथ। सुनते रहिए हमारे साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं जीवन आधार सताक्षी के साथ। और गुरु गुरु की महिमा का मंडन हर धर्म में किया गया है, क्योंकि गुरु के बिना जीवन अधूरा है। गुरु ही है जो आपको जीवन का सही संदेश देता है, आपको ईश्वर से मिलाता है, उस सर्वशक्तिमान से मिलाता है, आपको आपके कर्मों की ओर लेकर जाता है और जीवन का सही पाठ पढ़ाता है। शायद इसीलिए भगवान ने भी कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। यानी भगवान श्री कृष्ण ने, गोविंद ने भी गुरु को खुद से ऊपर स्थान दिया है। आइए गुरु को नमन करते हैं इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रह्मवाणी पर सताक्षी के साथ जीवन आधार।

जीवन आधार का आनंद ले रहे हैं आप रेडियो प्रस्थानी पर और अपनी सुबह को खास बना रहे हैं। दोस्तों, जब भक्ति कानों में पड़ती है, जब आपकी शुरुआत उसके साथ होती है जिसे आप मानते हैं, तो यकीन मानिए जीवन सरल हो जाता है, सार्थक हो जाता है और मन आनंदित हो जाता है। इसी मन को आनंद से भरेंगे इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए सताक्षी के साथ जीवन आधार।

आज जिस दौर में हम और आप आ गए हैं, रिश्तों की मर्यादा भूल रहे हैं, रिश्तों की वैल्यू कहीं खो रही है। हम अक्सर अपनी जबान पर कंट्रोल ना करते हुए न जाने कितना कुछ कह देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं, अगर बाद में आपको पछतावा भी होता है तो भी आप अपनी कही गई बातें वापस नहीं ले सकते। और रिश्ते एक गांठ से बंध जाते हैं, जिसे चाहकर भी आप कितना भी पछताएं, लेकिन उस गांठ के बिना उस रिश्ते को नहीं चला सकते हैं। इसी बात पर जीवन आधार में बढ़ेंगे आगे। आइए सुनते हैं ये अगला गीत। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी सताक्षी के साथ।

हमारा और आपका सफर जीवन आधार आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 107.1 AM पर। आइए इस सफर में आगे बढ़ते हैं एक और गाने के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी।

रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ जीवन आधार। हम सब चाहे किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म में विश्वास करें, लेकिन ईश्वर का नाम हम सब तभी लेते हैं जब हम पर कोई विपदा आती है, कोई मुसीबत आती है या कोई कष्ट हमारी जिंदगी में आता है। बिना कष्ट के ईश्वर को याद करने का समय हम में से किसी के पास नहीं है। आज कल परसों कर लेंगे पूजा या कर लेंगे आराधना, यही कहते हैं हम। लेकिन जरा सोचिए कि अगर आप दुख में ईश्वर को याद करते हैं तो दुख आने का इंतजार ही क्यों करना। अगर अच्छे दिनों में भी ईश्वर को याद किया जाए तो शायद वो दुख आपके जीवन में आएगा ही नहीं। इसलिए प्रार्थना करते रहिए, उस परमपिता से जुड़ते रहिए और सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर।

फानी 1701 AM पर आप सुन रहे हैं जीवन का आधार, जीवन आधार। जी हाँ, जीवन के पन्नों को हम एक आधार दे रहे हैं, अपनी और आपके जीवन को एक नया अर्थ दे रहे हैं कुछ खास बातों और यहाँ पर हमारे पेश होने वाले कुछ खास गीतों के साथ। एक और ऐसे ही गीत के साथ बढ़ेंगे आगे। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी पर सताक्षी के साथ जीवन आधार।

बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अक्सर जब भी आपको सफलता मिलती है तो एक घमंड, एक ईगो, एक अहम आप में घर कर ही जाता है, लेकिन ऐसे बड़े होने का क्या फायदा जब आप किसी को कुछ दे नहीं सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते, उल्टा अपने अहम को इतना ऊंचा कर देते हैं कि लोगों को आपसे भय हो जाता है, आपसे डर हो जाता है। याद रखिए, वही इंसान सही है, अच्छा है और संतुष्ट है जो अपना जुड़ाव आसमान पर पहुंचकर भी जमीन से रखे।

था आज एक और फिर से हमारा जीवन के जुड़ाव से जुड़ा सफर जीवन आधार। कल फिर से सुबह की शुरुआत हम इसी सफर के साथ करेंगे और जब तक हम और आप कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए और उस शक्ति को, उस परम पिता को, उस खुदा को याद करते रहिए, उससे जुड़ते रहिए। नमस्कार।

गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बानी और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे जानी जैन। प्रोग्राम शुरू हो चुका है जानने का सफर। सुबह सुबह एक फ्रेश स्माइल के साथ दोस्तों रेडी हो जाइए, क्योंकि अगला एक घंटा जो है वहां पर होगी खूब सारी मस्ती, म्यूजिक, ब्रिस्बेन की लेटेस्ट अपडेट, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी। जी हाँ, आज है थर्सडे यानी कि 13th of August और ब्रिस्बेन वालों भाई एका सीजन जो है फुल स्विंग में है ना। रॉयल क्वींसलैंड शो यानी कि एका 2026 अपनी 150th एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट कर रहा है और 8 से 16 अगस्त जैसे मैंने आप सभी को बताया था तब तक ब्रिस्बेन शो ग्राउंड्स में ये चल रहा है। तो अगर आप आज एका जा रहे हैं भाई फैमिली के साथ तो एंजॉय जरूर कीजिएगा और बस थोड़ा जो ध्यान देना है वो ट्रैफिक पे देना है, क्योंकि ट्रैफिक से बचकर ही ऑफिस पहुंचने की प्लानिंग कर रहे हैं। ब्रिस्बेनी हमेशा आपके साथ है तो इसीलिए भाई एका के करके काफी ट्रैफिक आप सभी को देखना पड़ सकता है, लेकिन जी थोड़ा थोड़ा करके जल्दी निकल सकते हैं ताकि आप सभी अपने ऑफिस में पहुंचने के लिए लेट ना हो। तो चलिए भाई इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक प्यारे से गाने के साथ ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेनी।

हाँ जी, तो ब्रिस्बेन वालों, आज मॉर्निंग में ना हवा थोड़ी सी ब्रीजी रह सकती है, लेकिन ओवरऑल वेदर की बात करें तो प्लेजेंट रहने का फोरकास्ट है और दिन में सनी स्पेल्स देखने को मिल सकते हैं। सुबह का अगर टेम्परेचर की बात करें तो अराउंड 8 डिग्री तक जा सकता है और आफ्टरनून में टेम्परेचर अराउंड 24 डिग्री तक जा सकता है। तो मॉर्निंग वॉकर्स और अर्ली कॉम्यूटर्स, जी हाँ, लाइट जैकेट का ऑप्शन हैंडी रखिए। और आपको एक बात बताऊं, ड्राइव करते वक्त ना वेदर से ज्यादा अपनी सेफ्टी पर फोकस जरूर कीजिएगा। वेदर का अपडेट मिला, अब चलते हैं भाई ब्रिस्बेन की इम्पोर्टेंट हेडलाइन की तरफ। वो क्या हेडलाइन है जानेंगे थोड़ी ही देर बाद। आप जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्बेन में।

हाँ जी, तो सबसे पहले बात करते हैं हाउसिंग सेक्टर की, जहां से एक इम्पोर्टेंट अपडेट आ रही है। ऑस्ट्रेलिया का टारगेट है कि 2029 तक 1.2 मिलियन न्यू होम्स बिल्ड किए जाएं, लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी लेबर शॉर्टेज, राइजिंग कोस्ट और डिले की वजह से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। करंट कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो करंट जो कंस्ट्रक्शन है वो रेट टारगेट से लगभग 27% नीचे चल रहा है। ब्रिस्बेन और सिडनी जैसे सिटीज में भाई बिल्डर्स वर्कफोर्स शॉर्टेज को मैनेज करने के लिए एक्स्ट्रा आवर्स तक काम कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी का इश्यू जो है अभी भी ऑस्ट्रेलिया का मेजर टॉपिक में बना हुआ है। तो आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक है जी रेडियो बिस्मानी में। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब स्पोर्ट्स की दुनिया में नजर डालते हैं। ब्रिस्बेन में वुमेन्स बास्केटबॉल को लेकर भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो है वो सामने आया है। WNBL ने ब्रिस्बेन में फ्यूचर एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी पर इंटरेस्ट दिखाया है और ब्रिस्बेन में एक WNBL टीम जो है वो फ्यूचर में लाने का आइडिया लीग की साइट्स में है। यानी कि भाई ब्रिस्बेन स्पोर्ट्स फैन के लिए भाई ये तो फ्यूचर में एक और एक्साइटिंग टीम देखने को सभी को मिल सकती है। और स्पोर्ट्स का मतलब सिर्फ क्रिकेट या फुटबॉल नहीं, ब्रिस्बेन का स्पोर्टिंग सीन कंटिन्यूअसली एक्सपेंड हो रहा है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे इस गाने के साथ, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

हां जी, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। वैसे दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी, कभी कभी ना हम लाइफ में इतना कुछ अचीव करने के प्रेशर में रहते हैं कि जो ऑलरेडी हमारे पास है ना, उसकी वैल्यू करना भूल ही जाते हैं। एक हेल्दी मॉर्निंग, एक कप कॉफी, फैमिली का एक मैसेज, फ्रेंड का गुड मॉर्निंग और ट्रैफिक में किसी स्ट्रेंजर का आपको वे दे देना। जी हाँ, ये छोटी छोटी चीजें है ना, हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाती है। आज एक काम जरूर कीजिएगा, किसी एक पर्सन को जेन्युइनली थैंक यू बोल के देखिएगा। मे बी उन्हें पता भी ना हो कि उन्हें एक छोटी सी हेल्प ने आपका दिन बेटर बना दिया हो। जी हाँ, यानी कि अगर हम किसी को कुछ स्माइल, किसी को थैंक यू, किसी की अप्रिशिएट अगर हम अपने मुंह से कर देते हैं ना, उस दिन हमारा तो मन खुश होता ही है, लेकिन सामने वाले का भी दिन बन जाता है। एक बार जरूर करके देखिएगा। अगर खुद के अंदर की खुशी को जानना है, पहचानना है, तो जरूरी नहीं है कि हम किसी मतलब से ही किसी से बात करें। बेमतलब होके, निस्वार्थ होकर अगर हम किसी की तारीफ भी कर दे, किसी को अप्रिशिएट कर दे, देखिए कितना अच्छा लगता है, होता है ना, करके जरूर देखिएगा। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्वानी।

0: हाँ जी, तो आइए इसी के साथ एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की तरफ हम जाते हैं और कुछ अपडेट्स निकाल कर लेकर आते हैं। तो दोस्तों, अगर हम अपडेट्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में म्यूजिक और लाइव एंटरटेनमेंट कैलेंडर ऑलरेडी काफी पैक्ड है और ब्रिस्बेन में भी अपकमिंग मंथ्स में कॉन्सर्ट और मेजर लाइव इवेंट्स का जो एक्साइटमेंट है वो ऑलरेडी बना हुआ है। और एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये भी है कि भाई ब्रिस्बेन का एंटरटेनमेंट सीन अब सिर्फ सिडनी और मेलबर्न के कंपैरिजन में नहीं देखा जा रहा, सिटी खुद एक मेजर लाइव एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन बन रहा है। जी हाँ, तो म्यूजिक लवर्स कैलेंडर को ना रेडी रखिए। आइए इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।
1: कभी रोक लेती है वो राह में, कभी रूठ जाती है वो चाह में, कहीं पे वो बरखा कहीं पे बहार, सुनो मेहरबानों ये किस्सा है।

बेगैरत इंसान हो जिसे बातें बनाने के सिवा कुछ नहीं आता। कुमार, ना तुम्हारा कोई कैरेक्टर है, ना ईमान, ना वफादारी।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्वानी में। सो दोस्तों, आज हमने अपने रेडियो ब्रिस्वानी में जहां पर जाने का सफर प्रोग्राम चल रहा है, वहां पर आज हमने बहुत सारी अपडेट्स जानी है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बन, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और बहुत सारी बातें हमने इस प्रोग्राम में की है। सो आशा करती हूँ आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आगे भी मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करती रहूंगी। और अब शो के एंड से पहले हमेशा की तरह यही कहूंगी कि हमें लाइफ में लग सकता है कि लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा, लेकिन हो सकता है दोस्तों हम बहुत छुपके से, चुपचाप से और बहुत धीरे से ग्रो कर रहे हैं। इसीलिए कभी भी कंपैरिजन मत कीजिए, कंपैरिजन को हमेशा बंद कर दीजिए। अपनी जर्नी पर जरूर फोकस कीजिए और हर मॉर्निंग खुद से कहिए, आज मैं

0: कल से एक स्टेप बेटर करूंगा या करूंगी, फिर देखना हमारा दिन बहुत ही खूबसूरत बीतेगा और हम बहुत जल्दी ग्रो करते रहेंगे। तो दोस्तों, अब टाइम हो गया है आज के ब्रिस्वानी मॉर्निंग शो का रैप करने का। आज हमने बात की ब्रिस्वानी वेदर, ब्रिस्बेन के बहुत सारी बातें, इवेंट्स, ऑस्ट्रेलिया हाउसिंग अपडेट की, एका की जो कि 150th एनिवर्सरी बना रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट की, और साथ में थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी भी हमने शेयर की है। सो याद रखिएगा, गुड मॉर्निंग सिर्फ एक ग्रीटिंग नहीं दोस्तों, एक माइंडसेट है। तो स्माइल कीजिए, अपना ख्याल रखिए, ड्राइव जो है वो सेफली कीजिए, और अपने आसपास के लोगों के लिए थोड़ा सा काइंडनेस जरूर रखिए। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चानी जैन, और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव एंड कीप लिसनिंग रेडियो ब्रिस्वानी। टेक केयर, बाय बाय।
1: मैंने

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। स्पेस की दुनिया में नए शिखर पर भारत, नासा ने अपने मून बेस मिशन में पार्टनर बनने के लिए बुलाया। अमेरिका ने भारत को नासा के बड़े मून बेस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए बुलाया है, जिसे चांद पर इंसानियत की पहली परमानेंट आउटपोस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। ये न्योता 5 और 6 अगस्त को बंगलुरु में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर में हुई नवी इंडिया अमेरिका स्पेस ज्वाइंट बुकिंग ग्रुप मीटिंग के दौरान दिया गया था, लेकिन डिटेल्स अब सामने आई हैं, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे टर्म में इंडिया यूएस स्पेस कॉपरेशन का अगला बड़ा चैप्टर बन सकता है। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को मौत की सजा, दमिश्क की अदालत ने सुनाया फैसला। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को दमिश्क की एक आपराधिक अदालत ने युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है। सीरिया के 14 साल के संघर्ष में लगभग 5 लाख लोग मारे गए थे। उनके छोटे भाई माहिर अल असद, जो सीरियाई सेना के एक पूर्व अधिकारी थे, को भी मौत की सजा सुनाई गई है। आइए जुड़ते हैं अब भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। अब वंदे मातरम का अपमान होगा अपराध, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून हुआ लागू। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करना अब अपराध माना जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा से वंदे मातरम बिल को मंजूरी मिलने के बाद 11 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिससे अब ये कानून बन गया है। इस कानून के लागू होने से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को जानबूझकर गाने से रोकना या उसमें बाधा डालना अपराध माना जाएगा। इस बिल से इसे वही कानूनी सुरक्षा मिलेगी जो अभी राष्ट्रीय गान को मिलती है। ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार की दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत की अर्जी की खारिज, मर्डर केस से जुड़ा है मामला। भारत की ओलंपिक में अगुवाई कर चुके रेसलर सुशील कुमार की जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुशील पर पूर्व जूनियर नेशनल कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या का आरोप है। इसी मामले में वो जेल में है और कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सुशील की जमानत याचिका खारिज की। यदि अब तक की प्रमुख खबरें, अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: Oh,
1: okay,
0: right, I don't know what
1: that
0: you're playing.
1: Was the wrong version.
2: Great
1: Thursday. Can okay. I play the correct version?
2: No, after this song. Okay. Ed first, then we'll
1: yes.
2: come back. Okay?
1: Okay. Sorry about that, everyone.
2: Yeah.
1: Woo.
3: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਦਾਬ ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਥਮ ਭਜਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਤਰੰਗੀ ਪਿੰਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂਰ 2026 ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ
4: ਦ ਲੈਜੰਡ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਲਾਈਵ ਇਨ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਸੈਟਰਡੇ 15th ਅਗਸਤ 6:30 ਪੀਐਮ
3: ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਵਿੱਚ
4: ਐਟ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਸੈਂਟਰਲ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਮਾਉਂਟ ਕ੍ਰਵਾਟ ਟਿਕਟਸ ਐਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਟਿਕਟ
5: Hi, this is Amitabh Bachchan.
6: And aap sun rahe hain Radio Briswani.
7: Hi, guys. I'm Madhvi, one of the Meat Brothers. And aap sun rahe hain Radio Briswani.
8: Hi, this is Salman Khan. And aap sun rahe hain Radio Briswani.
9: Hi, this is Deepika Padukone. And aap sun rahe hain Radio Briswani.
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
11: Hi, main hoon Tulsi Kumar. And aap mujhe sun rahe hain Radio Briswani.
12: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shah Rukh Khan.
2: Okay, we can give two tickets for Harbhajan Maan, eh?
1: Mm-hmm.
2: Okay, tell us when the show is and where. Simple.
1: Yep.
2: And we'll give you two passes.
1: Yep.
2: One pass
1: one.
2: Each.
1: One pass, yep.
2: Okay?
1: Hmm.
2: All right. चलिए जो मैं कहता हूँ कि कभी हमें जो लोकल सिंगर्स होते हैं तो उनका भी गीत बजाना चाहिए ऐसे में तो भाई आप जानते हैं हमारे रहीम भाई तो क्या बताऊँ मैं म्यूजिक में अपना लाइफ स्पेंड कर दिया है उन्होंने और एक गीत अभी उन्होंने रिकॉर्ड किया है शायद इंडिया में वही फिर मुझे याद आने लगे हैं ऐसा कुछ इसका टाइटल है दोस्तों आप सुनिए बताइए आपको कैसा लगा और नंबर है 04300317001 चलिए दोस्तों रहीम रहीम जुल्ला भाई से हम सुनेंगे

0: ओके रश्मि ज़ुल्फ़े, हम आज पुराने गीत बजा रहे हैं दोस्तों. अगर आपका पास भी कोई ऐसा गाना है जो इस प्रोग्राम को एकदम खिला सकता है, प्लीज भेजे हमारे पास और वील ग्लैडली प्ले इट, वोंट वी?
1: ऑफ कोर्स.
0: या सो आप कैसे भेजेंगे? आप जस्ट सेंड अस अ यू नो क्या बोलते हैं, जस्ट सेंड अ मैसेज में. ठीक है, चले सुनते हैं. इतना ना मुझसे तू प्यार भरा, तलत महमूद और लता जी से आप सुनेंगे दोस्तों.

0: दोस्तों आपसे माफी चाहते हैं कि कुछ देर के लिए हमारा इंटरनेट गिर गया था. आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड, हु डिड इट, किसका कसूर था, लेकिन हुआ था.
1: नो नो, आई थिंक इट वाज टेलस्ट्रा.
0: No, we don't know. Maybe it could be a power hitch, you know, glitch or something.
1: I got it in for Telstra, that's all. I got it in for Telstra. Okay. So I'm blaming it on Telstra.
0: All right. चलिए अगला जो गीत है दोस्तों, ये बड़ा मशहूर गीत है और I know you all will love this song. ओपी नैयर के संगीत पर इस गीत को गाए आशा भोसले ने. और tell me if you really like this song or not, ठीक है?

0: थैंक यू परमा भाई, आपको गाना बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। और एक जो गीत है दोस्तों, ये जो गीत था आप जानते हैं, शायद आप नहीं जानते, एक अमेरिकन गाना से इसको कॉपी किया गया था। नो, आई एम सॉरी, इट वाजन, इट इज सॉरी, नॉट दिस वन, ये कुछ और था, लेकिन ये एक ओरिजिनल हिंदी फिल्म सॉन्ग बात एक रात, जो 1962 मूवी का गाना रहा दोस्तों, एस डी बर्मन के संगीत, मजरू सुल्तान पुरी ने लिखा था इसको, और हेमंत कुमार और सुमन कल्याणपुर ठीक है गाए थे इस गीत को, और किसके लिए, देवानंद एंड वहीदा रहमान। वाओ, व्हाट अ कॉम्बिनेशन, या सो ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो चलो दोस्तों, और बस कुछ 13 मिनट रह गए हैं 9 बजे में, और अगला गीत,
1: अभी तक यू प्लेइंग वन सॉन्ग। यस, आई एम प्लेइंग द नेक्स्ट वन।
0: ओके,

0: ओके हम आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहे हैं अपने आखिरी मंजिल पर,
1: हाँ
0: और इसके बाद सताक्षी हो जाएंगे आपके साथ, भूलना मत दोस्तों, कार्यक्रम इट हैपन्स। और फिर 11 बजे से आप संदेश के साथ पंजाबी प्रोग्राम, और 3 बजे से निविया के साथ, ठीक है? ओके रेडियो मिज़बानी आप सुन रहे हैं। और अगला जो गीत है दोस्तों, एक देवानंद मूवी जो लूट मार का गाना है और म्यूजिक

0: और दोस्तों, जी हाँ, जाते जाते बस इतना आप से कहना चाहूँगा, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए किसी बड़ी मौका जो है मौके की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। किसी से प्यार से बात करना, किसी उदास चेहरे को मुस्कुराहट देना और हर नया दिन के लिए शुक्रगुजार होना, ये छोटी छोटी बातें इस दुनिया को बेहतर बनाती है कि नहीं? ये अपना ख्याल रखेगा और अपनों का भी, ठीक है? ऑलराइट, चलो इसी के साथ हम निकलते दोस्तों। और अमिता,
1: ओके, नमस्ते एवरीवन, हैव अ

गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक रेडियो प्रस्थानी पर एक बार फिर से आप सताक्षी के साथ और मेरे साथ अब आप सुनने जा रहे हैं अपनी सुबह का सबसे बेहतरीन शो। ये शो है आपके अपने ब्रेकफास्ट का शो इट हैपेंस। बेहतरीन इसलिए मियां मिट्ठू हम अपने इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हम इस शो में आपसे बात करते हैं आपकी जिंदगी की, आप जो पाना चाहते हैं उसकी और जो आपके लिए जरूरी है उसकी भी। और इसके साथ ही साथ हम इस शो में प्ले करते हैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मॉर्निंग नंबर्स। तो चलिए, जब इतना प्यारा इतना खास शो है तो भला देर किस बात की है। अगले ट्रैक के साथ बढ़ते हैं सफर में आगे। K+92 रेडियो ब्रिस्वानी, सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस।

वेलकम बैक रेडियो प्रसवानी पर सताक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। दोस्तों आगे बढ़ना है, ढेर सारी बातें भी आपके साथ करनी है, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे आज के उस विश के साथ, उस खास सेगमेंट के साथ जिसमें हम उन्हें विश करते हैं जिनके लिए आज का दिन खास है। सो जिनका आज है हैप्पी बर्थडे, उन सबको उनके बर्थडे की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। जी हाँ, हम यही तो चाहते हैं कि आपकी सारी जिंदगी खुशियों से भरी रहे, आबाद रहे, और यही हमारी विश भी है आज आपके लिए, और आपके लिए हमारा गिफ्ट भी है। जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास इसलिए है क्योंकि आज उनका जीवन साथी उन्हें मिला था। ये साथ जो है, सात जन्मों का ये आज के दिन ही जो है वो बंधा था। सो आपको आज के दिन की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। आप यूं ही जिंदगी के कदमों से कदम मिलाकर चलते रहें और एक साथ चलते रहें। इसी विश के साथ अब हम विश करेंगे उन्हें भी जिनके लिए है आज का दिन स्पेशल और खास। सो आपको आज के दिन की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। यकीन मानिए, आप जो भी चाहते हैं वो जरूर मुकम्मल होगा क्योंकि आपकी ख्वाहिश सच्ची और साफ दिल की है। आइए इस अगले ट्रैक के साथ बढ़ते हैं सफर में आगे। स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रसवानी, सुनते रहिए हमारे साथ इट हैपेंस।

तू कर लेना। सो वेलकम बैक, इट हैपेंस सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर। देखिए, वो वादे कभी मत कीजिए जो आप निभा नहीं सकते। जनरली हम बिना सोचे समझे वादे करने में बड़े माहिर होते हैं, ये नहीं सोचते कि हम निभा भी पाएंगे कि नहीं, है ना। जब आप चार कदम किसी के साथ चल नहीं सकते हैं तो चलने का वादा क्यों करना। जब आप दुख में तकलीफ में किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते, आपके ऊपर 500 लोग हैं आपको बोलने के लिए कि नहीं नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें नहीं जाना इसकी हेल्प के लिए, आप बिना सोचे समझे कि आपको लोग मना करेंगे, आपके घर वाले मना करेंगे, या आप खुद भी एफर्ट्स नहीं डाल सकते उन वादों में या उन कही गई बातों में, तो फिर यार किसी को उम्मीद ही क्यों दिखानी है, है ना। इससे बढ़िया तो जब आप उसे उम्मीद ही नहीं देंगे, और अगर आप कर पाए तो आप उसके वक्त पे उसके साथ जाके खड़े हो जाएंगे या उसकी हेल्प कर देंगे, वो ज़्यादा बेटर है। तो मुंह से कहने से ज़्यादा बेटर है एफर्ट्स करना। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ सुनिए और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर।

दिल माफ करना जानता है हमारा, दिल माफ करना जानता है हमारा, बस भूलने की आदत नहीं हमें। वेलकम बैक, रेडियो प्रस्थानी पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस। जी हाँ, बहुत सारे लोग हमारे आसपास, हमारे रिश्तों में हमारे अपने बनकर हमें धोखा देते हैं और डरते भी हैं काफी, फिर वो कि यार पता नहीं मैं माफ करेगा नहीं। लेकिन पता है क्या, सजा देना कुछ नहीं होता, माफ कर दीजिए, लेकिन जो उसने आपके साथ किया है उसे भूलिए नहीं। देखिए, इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसे दूसरा चांस ना दें। कई बार आप इमोशंस में भी इतना बह जाते हैं ना कि यार अपना ही तो बंदा है, और उसे 10 चांस और देते हैं और 10 बार धोखा और खाते हैं। देखिए, धोखा इंसान को इसलिए मिलता है ताकि वो आने वाली जिंदगी के लिए अलर्ट हो सके। ठीक है जी, तो जिसने जो किया वो भूलिए नहीं और दिल में रखिए भी नहीं। सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्थानी 107.01 FM।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
3: गानों की हैट्रिक सुन रहे हैं आप इस वक्त सताक्षी के साथ, क्योंकि मैं आ गई हूँ आपके लिए अब 3 बैक टू बैक ट्रैक्स लेकर। जी हाँ, दुकानों की हैट्रिक का आज पहला ट्रैक कौन सा है, आइए सुनवाते हैं आपको।

थर्ड एंड लास्ट ट्रैक ऑफ गोनकी हैट्रिक, यहाँ आ गया है तीसरा गाना। इसे एंजॉय कीजिए और कहीं मजाइएगा मेरे साथ, सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी 107.01 एफएम पर। इट हैपेंस।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

देखा जाए तो आने वाले वक्त में चीजें तो बड़ी एडवांस हो रही हैं, लेकिन लोगों की सोच बहुत छोटी हो रही है। जब कोई अपना ही अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है ना, तो उसके अपने ही उसे सपोर्ट नहीं करते हैं। यहाँ तक कि किसी अपने को लाइक करना भी, उसकी प्रोफाइल को लाइक करना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। उसे फॉलो करना तो बहुत दूर की बात है। याद रखिए, किसी को सपोर्ट करने से, उसे आगे बढ़ाने से उसकी नहीं आपकी सोच बड़ी होती है। तो अपनी सोच को बड़ा कीजिए। सिर्फ गाड़ियां बड़ी करने से, बैंक बैलेंस बढ़ाने से, बड़े घर लेने से काम नहीं चलता है। और सबसे पहले दिल बड़ा होना चाहिए, और उसी बड़े वाले दिल के नाम ये अगला ट्रैक है। इसे इंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस।

सो वेलकम बैक इट हैपेंस में आप सताक्षी के साथ हैं रेडियो ब्रिस्वानी पर। और देखिए, अगर कुछ सीख सकते हैं जिंदगी में तो किसी का दर्द बांटना सीखिए। किसी को अगर कुछ दे सकते हैं तो उसे हौसला देना सीखिए। और अगर कुछ छोड़ सकते हैं तो ईगो छोड़ दीजिए। सच कह रही हूँ, जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। अपनी जिंदगी को हमने खुद ने कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। दूसरों से जल कर, दूसरों को हमेशा पीछे खींचने का सोच कर, हमने देखा जाए तो अपनी खुद की ग्रोथ रोक दी है, क्योंकि इस नेगेटिव सोच में हम खुद ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सोचिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी पर।